कुछ न रहा अंदर होयर म्यांगा होरिन जिर गो हो नैमदा सार नैमदा रुदुर निगुंबे होरिन जिर वो दार उदुर पत्न का मरु उदुर पन्नर द अल्लर न सेंतन हाथाया तुर्तन न नकन ओल्लो न बायतन उजा बदन गोसना न हुर्तु मोदो थालगाजिर हादलावा आलबो लुपो हुर्तु मोदो थालगाजिर ओयंगु बलाजि बेरसा पाथा छक्तो जुवा हुर्तु मोदो थालगाजिरदे बाय जाजि हुदुल्ला हुर्तु मोदो थालगाजिरा सायक सेगजे इरगन खुदुल्लाजि मबोलले जासा बोद गुरोसि अलि सायक एन नलगदिने सेआइशिल्ला अनि दन्नेना पाथा हुर्तु मोदो थालगाजिरा खुदुल्लाजि सें इशकेसा होयरमेंगा होरिंजिरो होन्ना हुर्तु मोदो थालगाजिरा देलति बायतने योगि इरे होयरमादा इशकेसा हरबन नायमन मादा बेरसा हुर्तु मोदो थालगाजिरी सायकन सेउदा शिकुचे बायतले सायकन इशकेसा अदा होयनारा थाकदोजु व अय खुदुल्ले बेदन गोसनाना हुर्तु मोदो थालगाजिरा हादला आलबा अली हतक बायता सायकन बेरजे थाकदोजु व सायकन सेगबा दुर्दिचिन सायकन जोरन ताकजे अर्दम सादली सायकन कालगाजे हुर्तु मोदो थालगाजिर बायतने सायकन इचके बल्ला अन खतक अली सायकन दुर्द मुर्दियेबा अदर अलगजे मतर ओलनन बायतने अन नाजिररन गरन थसगो बलो थेलन गरन गाजिरा पादा उचकन शिबा थेलनरन सायकन उजिदा वर्दा हुलकर्तन उचकन शिबे थेलनरन सायकन सेगवलुदा सायकन नादलाव दन्नन अली परांडाक सोल्लाबलुदा अन हदुदुरो खुरचीदा शंकन अरंते सोलगाम मये अरे हमरा आउ लेरचीजे उचकन शिबद सोलगाव अरे पायलासा उचकन शिबा हरबं उदुर पायतल्ले नकने सरजु खुदुलबा अन मदा सोलगानना ओयंगन उतके उचकन शिबा बितके सोल्लाबा अनि त्वन्निना अली सायक खामगे जाक उजलाबा अली तेलती सनान सायक उजबा बैन वादा अली सेम बलबले मदलासा सोलगान जाकना अली सायक उजलासा ख्वाइनारा शंकर ती सोलगाव मये नाजिर रिन थेल्ल अरिन अली सायकन पायलाजे थाकदो जुव उचकन शिबी सोल्लाबा उचकन शिब उन सेन्न मदबा पायतलन जाका सायकन सोरबा बितके सोरसन जाका अनि त्वन्निन अली सायकन मदबाला शंकर रिन ती सेन रिन उचकन शिब सुलो सानाया वालाजे अन सेन रिन गतकुम मदबा थेल्ल अरिन अली सायकन दुलोबाला होयम्यांग होरिन जुरगो होन्ना अत खंतु होन्ना बेदन गोसनाना वरे सीजन थरगना अद बलाथा बद गुरुन जुरु दुरुन निदान द अनर नरलाथा चाव तुर थेबेन गोरब नमरता जिसिन दर अन खतक दर थुरन नर यावयेबा क्वातारा उदुर औरकजे इसं उदुर जाका चाव उदुरो म्यांग तुमु खतकदरा अर्दम शतालते इरग सोनजी गलगाबारुदा शंकम मासे तासन खतक तुरब खतक तेलते नग म्यांग तोलो चाव खुलु गरा आलबा अरे मादा इरग सोनुद खुदुलबा अद दर उजुदा योगे होरन नक तुमु थाव म्यांग अर्दम शतालते इरग आउबा कुछनुरा अन मादा पन्नर द शंकालरन उठके एक का त्या मादा नरन नकन वशिर्या